0: ठीक है। हाँ
1: इंजीनियरिंग एक्सामिन वेरीफाइंग एंड ऑफ द रिस्पांस Zone 62 at 2020 South 25th Street, an 84-year-old male, had a fall with hip pain. You're on taxamen.